क्या आप जानते हैं कि जिस ट्रेडमिल को आप हर रोज जिम में इस्तेमाल करते हैं उसकी तारीख क्या है? 1800 की दिहाई में कैदी रोजाना 6 घंटे इन मशीनों पर गुजारते थे। वो माउंट एवरेस्ट की आधी ऊंचाई जितना सफर रोजाना पैदल तय करते थे। एक तशद्दुद के आले से लेकर फिटनेस मशीन बनने तक ट्रेडमिल की स्याह तारीख अब शुरू होती है। ट्रेडमिल खास तौर पर खेल और फिटनेस के लिए आजमी मशीन है। आजकल जो मशीन जिमों की जीनत बनी हुई है, माजी में वो कैदियों को सजा देने के लिए इस्तेमाल होती थी। आज हम जानान बिलगिजी और नाज इरम उस्तुंदा के इस मौजू पर बात करेंगे जो उन्होंने TRT न्यूज के लिए लिखा है। तो आइए सुनते हैं ट्रेडमिल की ये दिलचस्प कहानी। ट्रेडमिल्स को 1800 की दिहाई में बरतानवी कैदियों को सजा देने के लिए बनाया गया था। उस दौर में बरतानवी जेलों का निजाम इंतहाई अबतर हालत में था। फांसी और जिलावतनी पसंदीदा सजाएं थीं। कैदियों को इंतहाई गंदे खुलियों यानी काल कोठरियों में बंद करके दुनिया से अलग थलग रखा जाता था। इस सूरत हाल को बदलने के लिए कुछ रजाकारों ने मदद करने की कोशिश की। इसके नतीजे में ट्रेडमिल जैसी कैदियों की इसलाह के नए तरीके सामने आए। ट्रेडमिल को हमारे जिंदगियों में 1818 में एक बरतानवी इंजीनियर सर विलियम क्यूबिट ने मुतारिफ करवाया। ताहम ट्रेडमिल बनाने का मकसद सेहतमंद जिंदगी गुजारना या चर्बी पिघलाना नहीं था। ट्रेडमिल को एक तशद्दुद के आले के तौर पर डिजाइन किया गया था। जब क्यूबिट ने सेंट एडमंड्स जेल में कैदियों को बेकार और सुस्त बैठे देखा तो उनके जहन में एक दिलचस्प ख्याल आया। उन कैदियों की जिस्मानी ताकत को इस्तेमाल में लाया जा सकता था और उनसे ज्यादा सख्त सजा का काम लिया जा सकता था। चुनांचे क्यूबिट ने पहली ट्रेडमिल डिजाइन की। पहली ट्रेडमिल दरअसल एक बहुत बड़े गोल घूमने वाले पेज की तरह थी जिस पर एक दर्जन के करीब कैदी एक साथ दौड़कर उसे घुमाते थे। ये सीधा दौड़ने के बजाय

0: 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं।
1: सामिन, आप हमारी नशरियात को शॉर्ट वेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज़ के अलावा टोकसैट 3A ईस्ट और 4A वेस्ट सैटेलाइट समेत हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं।
0: और आज हमारे प्रोग्राम में अलल तरतीब खबरें और सिलसिलावार प्रोग्राम अहम ईजादात और सैर सियाहत पेश किए जाएंगे। हमारा प्रोग्राम हसब मामूल अंकरा के मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे इख्तिताम पसीर होगा। आज आपकी मेज़बान है मिसबा शाहीन
1: सगीर अहमद
0: और स्टूडियो में हमारे साथ तकनीकी तआवुन कर रही हैं उसके खुराई।

सामिन, हमारी ज़िंदगी में कोई लम्हा ऐसा नहीं है जो बग़ैर हिसाब के गुजरे। ज़्यादातर जब हम माली मसाइल से नबर्द आज़मा होते हैं और बाज़ अवक़ात रियाजी के मसाइल से दो चार होते हैं, तो हम जल्द से जल्द नतीजे तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लम्हात भी आते हैं जब हमारा दिमाग उसके लिए काफ़ी नहीं होता। इन लम्हात में एक छोटा सा आला हमारे बचाव के लिए आता है, चाहे वो हमारे मोबाइल फ़ोन पर हो, हमारे कंप्यूटर में हो या हमारी मेज़ के पहलू में। अगर जिस सदियों से उसके नाम में फ़र्क आया है, लेकिन हम इस आले को कैलकुलेटर कहते हैं, जो बुनियादी तौर पर रियाजी के चार बुनियादी काम अंजाम देता है: जमा, मनफी, ज़र्ब और तकसीम। सामिन, इंसानों के पास अब बहुत जदीद कंप्यूटर्स हैं जो फीस सेकंड में हज़ारों ऑपरेशंस कर सकते हैं, उन्हें या तो अपने दिमाग पर या छोटे पत्थरों, लाठियों पर और आखिरकार एक सादा कैलकुलेटर पर इन्हिसार करना पड़ता है, जिसे अबैकस कहते हैं। सदियों पहले जब पहली तहजीबें बनी थीं, उसके बाद 17वीं सदी के बाद से तेज़ी से आलमी तजारती लेन देन के साथ बढ़ती हुई तादाद ने सादा अबैकस के साए से तजावुज़ करना शुरू कर दिया। अब ऐसे नए आलात की ज़रूरत थी जो 5 या 6 हिंसों के इजाफे या ज़र्ब के अमल को अंजाम दे सकें, और रियाजी दानों और मूजदों को इस मैदान में आने में देर नहीं लगी। सबसे पहले 17वीं सदी के अवायल में स्कॉटिश रियाजी दान जॉन नेपियर ने लोगार्थम का तरीक़ा तैयार किया, जिसने हिसाब किताब में बड़ी सहूलत फराहम की, और इस तरीके की बुनियाद पर उसने कैलकुलेशन टूल को नेपियर बोन्स कहा। उसी दौर में फ्रांसीसी साइंसदान ब्लेज पास्कल

जो बहुत कम उम्र में रियाजी में ज़बरदस्त शराकत करने की तैयारी कर रहे थे, एक बहुत ही आसान वजह से इसी सिमत में मुताला किया। ब्लेज पास्कल के वालिद एक टैक्स अहलकार थे और बढ़ती हुई तादाद ने उनके काम का बोझ दिन ब दिन बढ़ा दिया था। 3 साल की कोशिशों के बाद 19 साला नौजवान साइंसदान ने अपने वालिद के हिसाबात को आसान बनाने के लिए पास्कलाइन नामी मैकेनिकल कैलकुलेटर तैयार किया। ये आला, जिसकी 8 मिसालें आज मुख्तलिफ अजायब घरों में नुमाइश के लिए रखी गई हैं, ने 400 साल तक मैकेनिकल कैलकुलेशन और हत्ता के कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी आगाज़ किया, लेकिन यह तजारती लिहाज से कामयाब नहीं हो सका क्योंकि यह काफ़ी बड़ा और महंगा था। उसकी नई इजाद ने रियाजीदान ब्लेज पास्कल को 400 साल तक फादर ऑफ द कैलकुलेटर का खिताब दिया, लेकिन रियाजीदानों की तारीख पर किताब के जायजे के दौरान इत्तेफाक से यह इंकशाफ हुआ कि यह मालूमात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं थी। उन्नीस सौ पचास की दिहाई में साइंसदानों ने मशहूर माहिर फलकियात कैपलर की एक किताब का जायजा लिया। किताब में एक मुख्तलिफ कैलकुलेटर की तस्वीर देखी। ये ड्राइंग फ्रांसीसी साइंसदान पास्कल से पहले की थी और उनका मूजिद जर्मन माहिर फलकियात और रियाजीदान विलहेम शिकार्ड था। कैपलर की किताब में रिकोनिंग क्लॉक के नाम से इस मशीन का जायजा लेने वाले साइंसदानों ने इंकशाफ किया कि यह आला 6 हिंदसों तक के इजाफे और घटाव को दुरुस्त तरीके से अंजाम देता है और सारिफ को घंटी के साथ मुत्तला करता है, जो हिंसों के काफ़ी ना होने पर बचती है। तवील इल्मी बातचीत के बाद साइंसी दुनिया ने कैलकुलेटर की पहली दरियाफ्त का सेहरा शिकार्ड और पास्कल के दरमियान बांटना मुनासिब समझा। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों साइंसदानों के काम को मुख्तलिफ ममालिक में रियाजीदानों ने तैयार किया और आज के सुपर कंप्यूटर्स की बुनियादें रखी गईं। पहले पोर्टेबल और फिर इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, ताहम जदीद कैलकुलेटर के मूजिद का उन्वान दो फ्रांसीसियों की सवानही हयात में दाखिल हुआ। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।